0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: मुलाकात फिर हो ना हो इकरार करना पड़ता है, पूरी उम्र भी कयामत का इंतजार करना पड़ता है।
1: नानी माँ तुसी इन्ने दिना तो कुछ लिखी जाने हो सुनांदे हैं नहीं।
0: पुत ये कहानी बहुत लंबी आ, तेनू सुनदे सुनदे नू नींद आ जानी आ।
1: नानी माँ तुसी सुनाओ, आज मैं कुछ सुन के ही सोवांगी।
0: चंगा सुन फिर।

0: मम्मी आ सारे सामान लेके किथे जा रहे हैं?
1: आपा नु लाहौर छड़ के जाना पैना थी, देश दी वंड हो गई है।
0: की

0: बोलो झूम के बोलो वशमल्ले,
1: दूल्हे भाई की पेशानी झूम के बोलो वशमल्ले,
0: आए वशमल्ले,
1: आए
0: वशमल्ले,
1: ओ वशमल्ले,
0: ओ वशमल्ले,
1: वशमल्ले, वशमल्ले, वशमल्ले।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो।
1: वेलकम बैक, खुश आमदेद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ये है क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ। सामईन, खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है और कवाली प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फैसल याकूब सुल्तानी के साथ। और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: is Link Link FM.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Hi, my name is Harris Khan.
2: This is Mehmet Tabassum.
3: My name is Gufran.
4: My name is Asra.
5: My name is Sarah.
6: This is Adil Mohammed, Sheffield Youth Cabinet Member.
5: Keep listening to Link FM 96.7 FM.

0: This is Ahmad Hussein, and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
10: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफ एम 96.7. मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा.
9: लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव. दिस इज योर लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शेफील्ड्स लिंक एफएम.
11: फ्रॉम शेफील्ड टू द वर्ल्ड, दिस इज लिंक एफएम योर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

ये अभिषेक शर्म, ये है, दोनों बड़े ज़बरदस्त क्लास एक्ट हैं, बड़े तेज़ क्रिकेट खेलते हैं और शुरू ही से वो जनाब पहले बॉल से ही उनकी कोशिश होती है कि छक्का लगे, तो अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होती होनी चाहिए मैं समझता हूँ कि ख़ास करके ओडी ये T20 में दब के नहीं खेलना चाहिए, दिलेरी से खेलें। अभी वही मैं मिसाल फिर दूंगा उसके रजाउल्ला की, जो जैसे टेस्ट मैं देखने गया था तो उसने जनाब ये नहीं देखा कि कौन बॉलिंग कर रहा है, उसने शुरू ही से बड़ा अच्छा छक्के भी लगाए चौके भी लगाए और वो बिल्कुल दब के नहीं खेला, जबकि मैं समझता हूँ कि बाकी जो बड़े अच्छे हमारे अच्छे खिलाड़ी थे वो बड़े टेंटेटिव खेल रहे थे और ऑल दो उस दिन बैटिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन फिर भी सिचुएशन को देखना चाहिए। हमारे मैं एक मिसाल देता हूँ कि बाबर बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड वालों ने जब देखा कि ये कोई भी इनके ऊपर हरबा नहीं चल रहा तो उन्होंने फील्ड पीछे कर दी, दूर कर दी, और फिर अच्छे बैटरों को तो मालूम होना चाहिए कि ये किस लिए कर दी गई है, ऑब्वियसली वो बाउंस करेंगे, उनको बाउंस आउट करेंगे, और कोई विकेट अगर गिरेगी तो बाउंसर पे चांसेस ज़्यादा होते हैं जब फील्ड आपने स्प्रेड की होती है। शुरू में तो बाबर थोड़ा सा खेले मतलब बच बचा के, लेकिन वही बात हुई कि जब एक अच्छा बाउंसर आया जिसको उनको लेग साइड पे था उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना टाइम नहीं था उनके पास मेरे ख्याल, और वो फिर उन्होंने कैच दे दिया कीपर के हाथों में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको अगले टीम का जो है देखना चाहिए कि वो क्या हिकमत मिली, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपको आउट करने के लिए, तो उसको आपने फेस करना होता है। और ये जो एक बस्ट होता है कि ये फास्ट बॉलर्स ने बाउंसेस कराने हैं और दिस इज़ जस्ट फॉर 4-5 ओवर्स, दे कांट कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट्स ऑल ऑन द बैट्समैन कि वो किस सब्र कितना सब्र का मुजाहरा करता है। तो एनीवे क्रिकेट जैसे जैसे ये ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो समझ भी जाते हैं कि हमें जो आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें हमने ये गलती नहीं करनी वो गलती नहीं करनी है, तो क्रिकेट ऐसा ही है। और जो अच्छी मतलब समझ बूझ से खेलेगा वही सिकंदर होगा, वही क्रिकेट जीतेगा। तो हमारी टीमें पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रही हैं और बड़े ज़बरदस्त पिछले दौर में जनाब वर्ल्ड कप भी जीता, फिर T20 का भी एक कप जीता और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी एक जीती हुई है। तो नेवर लूज़ होप, अभी अच्छे खिलाड़ी अभी आ रहे हैं और जेल होने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से ये खेलें तो दे कैन बीट एनी टीम ऑन देयर डे। तो नाज़रीन आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ही हमारे पास अभी क्योंकि इतनी लोकल क्रिकेट तो ख़त्म हो चुकी है तो उसके ऊपर बात करने के लिए इतना वो सिलसिला नहीं है। तो एनीवे बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जनाब साथ दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो कोशिश करूँगा कि ज़ाहिर अब्बास को या इरफान को यहाँ स्टूडियो में लाऊँ या किसी और एक एक्सपर्ट को या किसी अच्छे खिलाड़ी को भी मैं अपने साथ यहाँ पे लेके आऊँ, उनसे गपशप लगाएं। तो अब आपसे जनाब इजाज़त चाहूँगा, तो बहुत शुक्रिया, तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक।

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
2: टुडे, टुमारो, एवरीडे, शेफील्ड्स, लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
18: और हर सूर
17: दिल को छो जाए,
18: वही है लिंक एफएम.
17: दिल से आपके साथ
18: लिंक एफएम शेफील्ड.

and I hope you will enjoy the Drive Time Show. So stay tuned, relax, chill pill. हम हैं ना आपके साथ जहां भी आप जा रहे हैं. Link FM आपके साथ साथ 24 hours a day, 7 days a week. So let's start the show.

जी वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. टाइम इज 4:29. इफ यू जस्ट ट्यून इन, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. Welcome to Thursday's Drive Time. Studio number is audible on 4261-8181. And WhatsApp or 7939-849-339. Thunder program. तो क्या मैं भी ठंड प्रोग्राम कर दूं? हो सकता है आपको ठंड प्रोग्राम ही लगता हो ये. वी आर लाइव ऑन 96.7 FM, लाइव ऑन DAB एंड लाइव ऑनलाइन. ओनली 7 पीपल आर लिसनिंग ऑनलाइन. जब से बताना शुरू किया है कि कितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, लोगों ने भागना शुरू कर दिया है. जैसे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट कोड से या कौन सी दुनिया के मुल्क से सुन रहे हैं, और मैं पता करने आ जाऊंगा कि आप क्यों सुन रहे हैं. आप सुन रहे हैं, आपकी मेहरबानी. आप नहीं सुन रहे, कोई गल नहीं. आप सुने ना सुने, आपकी मर्जी है यार.

चलें जी एक ट्रैक की तरफ चलते हैं। एक क्लासिक ट्रैक की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं ये ट्रैक आपको अच्छा लगेगा।

जी उम्मीद करते हैं कि अभी भी आप हमारे साथ होंगे। दिस इज ड्राइव टाइम शो, लास्ट ड्राइव टाइम शो ऑफ दिस वीक। वेरी ठंड प्रोग्राम ऑन व्हाट्सएप। आई ओनली हैव टू मैसेजेस सो फार। बहुत बिजी हो मेरे भाई, बहुत बिजी है। वैसे थर्सडे मैंने आपको पहले ही बताया था, पता नहीं थर्सडे का दिन जरा ठंड प्रोग्राम हो जाता है। थकना तो मुझे चाहिए कि चौथा प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप थक जाते हैं भाई। चलें जी, अगर फिर भी आप सुन रहे हैं, इफ यू आर ड्राइविंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू व्हाट्सएप मी, जस्ट गिव मी अ मिस कॉल सो आई विल नो दैट यू आर लिसनिंग एंड यू आर ओके। एंड इफ यू आर नॉट ड्राइविंग देन व्हाट्सएप 07939849339।

जी वो हम सफर था। ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल लिरिक्स, पोइट्री बड़ी जबरदस्त थी। मुझे नहीं पता कि आपको ये वाला हम सफर अच्छा लगा या ये वाला। कुरतुलैन बलोच की खूबसूरत आवाज़।

वो हम सफ़र था। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक आपने एंजॉय किया होगा। इन वन मिनट वी आर गोइंग फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, सो स्टे ट्यून। आई डोंट वांट टू प्ले एनीथिंग राइट नाउ, एंड आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक मोर ट्यून्स कमिंग अप, एंड आफ्टर ड्राइव टाइम Raja Saklan Saab and Master Razak Ajmal Saab will be presenting Haqaiq. And after Haqaiq, from 8 till 10, Geet Se Ghazal Tak. So stay tuned.

जी उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे आज के ड्राइव टाइम को। मैसेज भी करते रहा करें और बताया करें कैसा लग रहा है ड्राइव टाइम, और अगर आज कोई ऐसा ट्रैक लगा जो आपको पसंद आया जरूर बताइएगा 07939849339।

आजकल गुलाबों से काम नहीं चलता मेरे भाई, खर्चा करना पड़ता है, खर्चा करो मेरे भाई। गुलाब फिर भी सस्ता मिलता है। कोई गड्डी शटी लेके दियो, मैं क्या कोई कार शहर। राइट आफ्टर द ड्राइव टाइम, राजा मोहम्मद सकलैन साहब। And Master Razak Ajmal Saab will be here presenting Haqaiq. 6 till 8.

आज सारे लेट आ रहे हैं भाई, जब मेरे जाने का टाइम हो रहा है तब आ रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, आप एक में मैसेज आया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका पसंदीदा ट्रैक लगाऊँ, लेकिन 1734 पर आपका मैसेज आया था कल और आज आया 1740 पे। इस लास्ट मिनट में मेरे लिए ट्रैक ढूंढना मुश्किल हो जाता है और आई थिंक उनका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है, ड्राइव टाइम ज़रा डिफरेंट है। ड्राइव टाइम में आपको पता है कि ज़रूरी नहीं होता कि मैं सब जो ट्रैक्स रिक्वेस्ट किए जाएं वो पूरे लगा सकूं, कोशिश करता हूं, लेकिन कभी भी ड्राइव टाइम में मैंने वादा नहीं किया कि जो भी आप ट्रैक फरमाइश करेंगे वो ट्रैक लगेगा। तो आई अपोलोजाइज, बट मैंने आपका ट्रैक लाइंड अप किया हुआ है बहन मेरी, आपका ट्रैक लगाएंगे, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि समटाइम्स ड्राइव टाइम में यू माइट रिक्वेस्ट समथिंग एंड आई मे नॉट एबल टू प्ले, बट हमारे जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनमें आमतौर पर रिक्वेस्ट की जाती है कि यू नो इफ यू वॉन्ट अस टू प्ले एनी ट्रैक दे कैन प्ले। कलीम के बहाने कल की बात, आज किया है मैसेज आपने इतनी देर से और आप कह रहे हैं व्हाट्सएप वॉज नॉट वर्किंग यस्टरडे, तो मैं क्या, अपना बिल पूरा दिया करो ना कलीम, की कर रहे हो यार, अगर बिल नहीं दोगे, अगर आप बिल नहीं दे रहे तो भाई निकू को बोलो यार, निकू दे दे बिल, कोई बिल पे करेगा तो व्हाट्सएप चलेगा ना मेरे भाई, माना के व्हाट्सएप फ्री है लेकिन फिर भी भाई सिम के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अच्छा वश सारा ब्लेम मेरे थे कि व्हाट्सएप वॉज नॉट वर्किंग फ्रॉम अवर साइड, ले लेता हूँ भाई, आदत हो गई है मुझे सारे ब्लेम अपने हिस्से में डालने की, कोई गल नहीं, ये भी ले लेता हूँ मैं। और जुनेद ने भी हमें ज्वाइन किया था और शुक्र है कोई ट्रैक लगा था जो उन्हें पसंद आया था, आप कह रहे हैं लास्ट वन जैसे मुझे, ओके आई वॉज बींग सार्कास्टिक, व्हाट यू मीन आई वॉज बींग सार्कास्टिक, आई थिंक यू आर ऑलवेज सार्कास्टिक, आप जरा क्लैरिफाई करेंगे, इस स्पेसिफिक मोमेंट में आप सार्कास्टिक नहीं थे, जब भी आप आते हैं मैसेज आपके इसी किस्म के होते हैं। कोई गल नहीं भाई, कभी कभार मैं नहीं पढ़ता मैसेज, समझ लिया करो, फिर भी मैं आपके साथ साथ चलता रहता हूं और आप मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं, इस ट्रैक की फरमाइश की है हमारी सिस्टर है शाहिदा बानो, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं और बहुत ही तारीफ कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपके, क्या अच्छा लगा कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अगला ट्रैक आपके लिए, आपकी फरमाइश पर, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। जुनेद जो है वो घर पहुंच गया, पूरे शेफील्ड को पता चल गया कि तू घर पहुंच गया। और साथ ही साथ आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम के दौरान मेरी किसी बात या मेरे किसी अमल से आपका दिल दुखा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही, नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।

0: It's time for our weekly debate and discussion show.
1: حقائق.
0: Stay tuned only on Link FM.
2: Link FM के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से Link FM का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: चाहिए ना, हमारे जो हुकूमत के अंदर हैं या ओपोजिशन, छोड़िए इनको, ये तो जब सफ़र करते हैं इनका सफ़र निराला होता है। ये जब आपने कितनी बार हमने देखा पढ़ा भी, ये उम्रा करने के लिए जाते हैं, ये वाले पहले वाले देखिए नौ शरीफ फैमिली के साथ जाते हैं, इमरान खान पूरी फैमिली, बल्कि फैमिली से भी ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। उम्र और वो अखराजात कहाँ से आए, किसने अदा किए, नवाज शरीफ के अखराजात किसने अदा किए कहाँ से आए, शहबाज शरीफ के अखराजात किसने अदा किए कहाँ से आए, और बिलावल भुट्टो के अखराजात किसने अदा किए कहाँ से आए, जरदारी के अखराजात किसने अदा किए कहाँ से आए। मेरे ख्याल में खाया उसी ने नहीं जिसको मिला नहीं है, जितने भी थे इंक्लूडिंग पीटीआई इमरान खान, मैम सारी मैं नवाज शरीफ को मैंने पहले कहा है, यानी कि अफसोस ये है, मुझे अफसोस ये है।
1: इस पॉइंट पे आपसे इख्तलाफ भी नहीं किया ना, मैं एग्री करता हूँ,
0: तो यहाँ कोई इख्तलाफ करने की गुंजाइश ही नहीं है
1: सारे ना? अगर हमारा एक सिस्टम देखा जाए, हमारा एक सिस्टम देखा जाए उसमें यही कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी इसकी बेस से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है इन तमाम फैसलों से या इन तमाम चीज़ों से, तो पाकिस्तान मजबूत तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी अफरा तफरी होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, अगर फ़र्ज़ करें हमारा एक पुलिस का जवान ज़ख्मी या खुदा ना ख्वास्ता मारा जाता है, तो वो भी उसी कौम का बेटा है, एक आम शहरी मारा जाता है तो वो भी उसी कौम का बेटा है, तो नुकसान तो अपना ही होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको पता है राय साहब, मैंने हमेशा कहा आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ टेबल टॉक, दुनिया के सारे मसाले, आप पूरी दुनिया के मसले हल करने के लिए जा रहे हैं,
0: हमेशा ये बात कही,
1: पूरी दुनिया में आप पीस पीस पीस के लिए जा रहे हैं, सारा कसूर पीटीआई का कर दें, लेकिन फिर भी आई थिंक देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप आराम से तहम्मुल से डंडे लेके आप हर वक्त डंडा
0: नहीं, सारा कसूर पीटीआई का नहीं है,
1: ये कहना चाहिए उसको कर दें आप जो कश्मीर में जैक बैठे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात करना छोड़ दें, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो बंदा अपने हकूक की बात करेगा हम उसके ऊपर फतवा लगा देंगे, ये मुल्क से
0: ये कहना है। ये कहना मुनासिब नहीं है, इंसाफ नहीं है कि सारा कसूर पीटीआई का, ना ये बात किसी ने,
1: अगर
0: ना ये बात किसी ने कही है,
1: अगर अगर फर्ज करें मेरी औलाद अगर मेरी बात ना मान रही हो या वो खराब भी हो जाए, तो थोड़ी सख्ती भी की जाती है फिर नरमी भी की जाती है ना, यार टेबल पे आके कोई मसले को हल किया जाए। इन टेंशनों से, इन प्रॉब्लम से पाकिस्तान को आजाद करने के लिए सबको मिल बैठ के कुछ लो और दो की पॉलिसी पर अमन आ सकता है, उसमें
0: अमन आ सकता है। और सामने नजरिए प्रोग्राम हकाइक लिंक एफएम 96.7 FM, हमारे साथ प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो भी शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर प्रोग्राम को देखते हैं, जितने भी तकलीफ मोहम्मद साहिब आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चौधरी आसिम साहब भी कहीं बैठे हुए हमारे प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, चौधरी आसिम और मोहम्मद कासिम साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, और मोहम्मद महमूद साहिब आप, उन्होंने कहा है आप भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे फरहान इस्लामिया रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से हमारे साथ है जी। मुमकिन ये कहना चाहते हो जी कि ये मैं आपसे, यानी कि आप फरहान इस्लामी शायद ये कहना चाहती हो हमें कि इतनी तरक्की है यहाँ हमारे यहाँ पेशावर में और रावलपिंडी में इस्लामाबाद में जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, इस पर कोई शक नहीं। जहाँ तक तरक्की का तल्लुक है जी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम दुआ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हों, लेकिन पंजाब के अंदर हालात कुछ बेहतर है, जैसे भी बेहतर हुए हैं लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यही कहते हैं कि के पी के वाले भी इसकी नकल करें। चलते हैं ब्रेक की जान, मिलते हैं ब्रेक उस पर।
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2 Day project, bringing together different faiths and cultures.
3: doctors to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0800

0: खबर का कोई और भी हिस्सा है, लेकिन पैगाम यही है कि बच्चों जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी निगरानी करना, ये हमने हमेशा कहा है कि जिस भी कम्युनिटी से किसी का ताल्लुक है उसको साइड पर रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स की, वालदेन की रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उस वक़्त नहीं, जब बच्चे छोटी छोटी उम्रों के हैं उस वक़्त इन उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत शुरू करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। सामीन नाजरीन, आपको पता है कि जब बच्चों की उम्रें हो जाती हैं 14 साल से 17 18 साल के दरमियान, ये बड़ी क्रोशल उम्रें हैं, और फिर बच्चों को समझाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि जब बच्चे बिल्कुल छोटी सी उम्र के हों उस वक्त उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। इस और इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स पहले से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है इस पर। और बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो दोनों जो वालदा है और जो वालद, दोनों की बराबर रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर ये होता है कि मुमकिन है कि वालद या माश के खातिर बाहर हो, काम काज कर रहा हो, क्योंकि उसने कमा कर घर लाना है, अखराजात अदा करने हैं, बिल्स वगैरह अदा करने हैं, तो फिर बेचारी माँ है, तो माँ के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। घर का काम करना होता है, और फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी, लेकिन ये जिम्मेदारी अब अदा करनी पड़ती है और अदा करनी चाहिए। अगर हम इसको नज़रअंदाज करते रहें, कोई भी क्या हुआ जी, बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, अभी बच्चे की उम्र ही क्या है, वालदा या वालद अक्सर ये कहते हैं जी मेरे बच्चे की उम्र ही क्या है, 10 साल का है जी, फिर वो 11 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता है, फिर मुश्किल भी बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा अहम एक पैगाम है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। जी मास्टर साहब
1: जी, शुक्रिया जी, बिल्कुल जी सही बात है। ये तो कल के मैंने टॉपिक में यही गुफ्तगू की थी कि बच्चा अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से वालदेन के लिए, और वालदेन का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे की तरबियत ना करें। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर भी सजा, ये तो शुरू हो गई है, कानून बनना है, इसमें भी वालदेन को सजाएं होंगी, अल्लाह की बारगाह में तो बच ही नहीं सकती। ये उलमा करम जी बताते हैं ना, सिर्फ ये वालदेन से बेटे औलाद सदका जारिया है, बाद में दुआएं करेंगे, ये नहीं, अगर सही करेंगे सवाब है, अगर सही नहीं करें तो अजाब भी है। लिहाजा आप जो है इस चीज़ से बचने के लिए वालदेन को अपना फुली टाइम जो है बच्चों पर सर्व करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, और करते करते काश थोड़ा सा टाइम मजीद हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है, इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन नेवरदिलस इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, तो नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट जुमरात को इस पर हम मजीद बात करेंगे, और सोशल मीडिया का भी किरदार, उसकी और बच्चों की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी पर हम नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम के अंदर ये नोट कर रहे हैं कि मजीद बात करेंगे जिंदगी वफा की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम के अंदर जी, मास्टर साहब
1: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
3: Nayab's Takeaway in Sheffield
4: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
3: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
4: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
3: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
5: Accident ho gaya rapa rapa. Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat the claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kiraye ni gaddi na accident ho gaya hai, te the claim team tusan khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakeyan vich taxi te private hire gaddi

0: आराम से बैठिए, यादों में खो जाइए और लुत्फ उठाइए खूबसूरत गीतों और दिलनशीन गजलों का। लिंक एफएम के साथ
1: लिंकिंग कम्युनिटीज, दिस इज लिंक एफएम 96.7 एफएम।

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।
2: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
3: This is Link FM.

दो घंटे की मौसीकी, दो घंटे यादों के, दो घंटे गीत और गजल, सिर्फ लिंक एफएम पर।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते।

0: You are listening to 2 hours of beautiful Geet and Ghazals.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है Link FM.
1: दिल से आपके साथ
4: Link FM.

0: कौन से एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर होरे ना ए एमओटी वाले, वो हर किस्म ने गड्डियां नहीं एमओटी करने, ओए कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
0: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
2: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786786285।
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी।
4: You are listening to Link FM 96.7.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
16: Sheffield.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अमदस करा है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।